हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नामदेव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शे गुरु अर्जन साहिब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूहानी रूह की खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

0: कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार करन लगता है।

हुन जवानी आ गई। मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता कराउंदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैणी नीर असार बहे, जेबा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे। इसलिए

कबीर साहब कह रहे ने मैं ता गुलाम हां, मैं ता ओदे घर दा नौकर हां, ए हुण ओदी मर्जी है।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर,

तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया,

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल।

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनु गंगा दे विच डोब के मार दियो, मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वाले सिपाही लै के तुर पए ने।

छिपाई हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा है ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

सिकंदर लोधी दुनिया दा बादशाह अज नंगे पैर कबीर साहब दे आके चरना ते मथा टेकिया ते उपदेश मंगिया। कबीर साहब कहन लगे भाई अकाल पुरख ने बादशाही दिती है ते ओदे बंदिया नू तंग ना कर, तू भी ओदा सिमरन कर, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। इस तरह जेड़े भी राम दी ओट लेंदे ने राम उन्हां दी रखिया।

अज कल कारां हवाई जहाज हैलीकॉप्टर ते पहले समय विच हाथी घोड़े रथ इन्हां दी सवारी होंदी सी ते राजे महाराजे हाथी की सवारी करया करदे सन ते साहब जी कहते हैं तले कुचरिया।

कहा है तू हाथी के सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया, तू भावे समझदार है मैं बहुत खुश हो गया।

दिव्या बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे अरदास करके ये सारिया संगत उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर गए हमने मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा होगा क्योंकि उनकी बाणी में

क्योंकि जैसे कोई कर्म करता है उसनों फल भोगना पड़े। और माया का थोड़ा जहा लालची सी लम्मा पिया सोचता है मना 600 रुपये बेटा तरा के ना तरा आखो सद राम श्री वाह। जिस समय की असि गल करते हैं उस वेले का 600 रुपया अज के हजारों नालों ज्यादा कीमत रखता सी।

संकल्प गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठते हैं। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठियां रही हैं ते साहिब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानूं कैसा रस आया? हुण जिहड़े ते रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहता जबान दा रस है, क्योंकि मुंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, पर सिखा तू नहीं बोलदा, तेनू कैसा रस आया? और एक कहता है, जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदी कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, जो जो कीर्तन सुने मन भटके आ नहीं, मन दे विच ही टिक गया, आखो सतना आप श्री हो। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है, आखो सतना आप श्री हो। पाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहिब जी कहन लगे सिखा निहार, एक महीना सेवा की थी। और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबा को भेट करके मत्था टेकया, ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों, एक सरबलोह का कड़ा दिता जिहड़ा कड़ा सी हाथ विच बने, नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अदब रखी, जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। बड़ा खुश होया, खुशी खुशी आनंदपुर साहब को तुरया। पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब को बाहर आया ते सारा आनंद गुआच गया, आखो सतनाम श्री। माया वाली बिरती फिर जाग गई, जिवें असीं कई वारी कीर्तन विच बैठे होने हैं, ये बड़ा आनंद आता। जदों गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, होर गल्लां याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब तो निकले तो सारा आनंद गवाच गया। कहन लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जिहड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहिंदे सन जो मंगेगा तैनू मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैं 1000 रुपए कितों दे देने, आपको सतनाम श्री हुआ। उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता हो

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नूं भेटा कीता ते गुरु ने मैनू की दिता है,

ऐ सुत ऐ पुत्र ऐडा वड़ा कोर पाप क्यों कीता तो गुरु दा वचन क्यों बेची। पिता ने समझाया मां ने समझाया पर हुण सामने सोने दी

बिस्तर निचोड़ देता, बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरी सिंह की जान खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले, एक सर्दी, उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासरी मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सा संगत मां ते फिर मां ही मां पासा मार के लपी पई, अखा बंद पर जागदी, अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र नो नींदर नहीं आ रही, दिन चढ़िया

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाय होएगा, फिर लोग सुखिए।

परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। भैणा वालों आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहिंदे ने कि प्रगटे हो, जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने के मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हों का संबंध जिहड़ा है विसाखी के नाल है। 6वें पातशाह ने यह ढाडी पैदा कीते ते सिख इतिहास नूं संभालण लई, सूरमिया ते योध्यां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा इकट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लै के दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे इकट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, आ कृपान जो गुरु के सिख लैके खड़े ने, और मंग कीती कि एक सिर दी लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लिया ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर दी लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या एक गभरू उठे, जेदी 30 साल की उम्र है, जेदा ना है भाई दया राम, और जेदे माता का ना शोभा देई और पिता का ना मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह दे चरणा विच आके कहण लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर शशो पंज सी कि एक वेर चीज अर्पण कीती दोबारा भी अर्पण कीती जा सकती है। कहण लगा, जदों 13 साल दी उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम दे नाल तुहाडे दर ते आया सां, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे चरणा विच सिर ते उदों दे दिता। कलगी वाले पातशाह ने कृपान अगे कीती के गबरुआ आ कृपान फड़ के लड़ सकते। कहण लगा, काम हमारा तोलै तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगी वाले पातशाह अंदर लै गए ने और सहमे हुए सिर देख रहे ने। उदू बाद दूजी वेर आए ते दूजी वेर सरदार धर्मचंद जी उठे, पिता का नाम माता का नाम अनंती, पिता का नाम परम सुख, और जदों उठिया इनू भी लै गए खून दे नाल लथपथ कृपान।